0: और मुझे मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? मैं अपना प्यार एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती।
1: Tengah feeling kan tu? Steady bah. Ada banyak lagu-lagu Bollywood.